0: ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଅହଙ୍କାରର ବୃକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା ବିନାଶର ଫଳ ହିଁ ଫଳିଥାଏ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
2: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने एक दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल

0: हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the Red Fort and made several important announcements. Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: Koi bhi rashtra tab mahaan banta hai jab apne sapnon, apne sankalpon aur apne samarth ke dam par aage badhta hai. Bade sapne हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Stressing on the empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. Union Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Alwar, Rajasthan today. The Ministry of Cooperation informed that at the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be e-inaugurated. Additionally, appointment letters will be distributed to more than 10,500 newly appointed personnel under the Rozgar Utsav. Vice President C.P. Radhakrishnan will be on a 2-day visit to Tamil Nadu beginning today. During the visit, he will participate in a series of academic, commemorative and literary events in Chennai, Chengalpattu, Tiruvarur and Tanjavur. Today, Mr. Radhakrishnan will attend the 22nd convocation of the SRM Institute of Science and Technology in Chengalpattu. He will also attend the first death anniversary function of former governor of Nagaland, Manipur and West Bengal in Chennai. National Testing Agency, NTA, will release the provisional answer keys for UGC NET June 2021.

0: corazón se quite el sol. Agobastirte de ser tu petición, pero que tengo que tener que no te haga parte de la limpieza de hombre. Lo voy a mantener en la meditación. Y te aseguré que soy tu aborto próximo de que no te haga por ti. Por ti me he hecho que levarte esa frente para vivir. Pero no te hicimos de canción. ¡Suscríbete al
1: canal! विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका इतना ही नहीं विकसित भारत का पृथ्वी मेरे देश का युवा है और इसलिए हमें विकसित भारत के दस को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है।
0: वाला का कॉफी का मसाला का दिवस कॉलर अक्सर प्रधानमंत्री दिल्ली और के सिक्योरिटी लाइन विश्वासिंग

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 8:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଶୁଣିବେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ମିଶନ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रैली सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
4: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
3: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
4: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
3: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
4: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
3: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
4: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल

0: प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा, बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
3: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महवीश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।

0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
2: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन

0: सिंह की घोषणा, अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस ऑल पार्टीज टू सपोर्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज टू स्ट्रेंथन विमेन्स कंट्रीब्यूशन इन शेपिंग इंडियाज पॉलिसीज। Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
2: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030 India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. More from our correspondent.
3: External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign launched from the High Commission of India in Fiji. The relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. The relay ended with the flag hoisting by the Consulate General of India in San Francisco. The relay also marked 150 years of Vande Mataram, celebrating its enduring legacy as a symbol of India's national spirit. Spirit and Pride. The relay witnessed overwhelming participation and response from the members of the diaspora, underscoring the deep emotional connect with the Taranga. With Suparna's report, Payal

0: किशोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: हेलो आकाशवाणी भवानी पटना कार्यक्रम।
3: हाँ नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, किए कहते कौटू कहते?
3: हाँ मु राधाकांत भाई कहूँ, बरगढ़ जिला विजयपुर ब्लॉक जालपाली रो।
2: राधाकांत भाई प्रथम कह दियंतु केमती अछंती?
3: मुई त भल जे, आपण केना अछन कहंदा?
2: मु भी भल रे अछि। आज गांव रो पानी पग केमती अछि?
3: पान त एटा टिके टिके हम से स्प्रे कला भाई पकु जे आ बादल कर जे पूरा, एटा पूरा बादल दाबी नै ये।
2: लास्ट टाइम जो लो प्रेशर हितला तो बरगढ़ संबलपुर एरिया रे बहुत वर्षा हितला।
3: हां हां बहुत वर्षा हितला, हमर विजयपुर त हाइट लागे 315 मिलीमीटर।
2: हां माने आपण को गांव रे किछि पानी पई किछि प्रॉब्लम हे नि त?
3: कम है जे ना बेसी किछि खेय खाते ना हे ने। घाई हुआ तो एटा मारी जाइए खाली आउ बेले एटा बंधा मुनि चली थिला, एटा पलारु आरु चली जे गारे।
2: निश्चित भाव रे वर्षा जो हिसाब रे होउची, जोठी किछि यातायात रो सुविधा न थाय सेठी असुविधा होउची।
3: हां हां
2: रास्ता जक धोई जाउची,
3: प्रॉब्लम दिगे नै है। एटा खाली धान धुना जंदा कचरा करि रा करा देला बेले पानी बुढी वाला बेले कोई कुहाई जे बेले सेटा नुआ पल्हा पुली बकै करि फेर आरु कर जन लोग एटा।
2: हां एथर अत्यधिक वर्षा होउची ना, सेथि पई चासिंग को पई भी बहुत असुविधा, अनेक जगह रे खय खेती हि जाउची।
3: हां हां
2: अच्छा कहि दियौ तू को गीत सुनै पई फोन करचंती?
3: आज गुटे देशभक्ति गीत गोटे सुनवा जीरगा, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों रो।
2: ठीक अछि,
3: हम इस देश की धड़कन है।
2: ठीक अछि, हम निश्चित भाव रे गीत सुनैबु। आउ कहंतु घरे समस्त केमति अछंती?
3: हाँ समस्ते घरे भी भल अच्छा, इटा तो आम इटा क्षेत्र अच्छे इटा बैगन से उडर टे जुता जुती कर नौ आग तो ये कूड़ा कुचा इटा तुषा करा होता इत मेसीन मान आसला न
2: एबे काम आउटी सहज हि जाइछि ना मशीन दे करबा द्वारा देखंतु ना राधाकांत भाई एबे ना वर्षा मारले जो घड़घड़ी मारुची मेघ उठिले केबे भी गछ पाखरे रहिबेनी।
3: नै नै हमें केबे नै रहौ एटा, बाकी जेंडा ना अर्थिन माने शॉर्ट करा है हमर घर भी।
2: हां
3: हाउस एवरीथिंग बेले और खेत जो एटा रहला एटा गुडे कुरियाडा बनाई और गयतले केबे नै रहौ।
2: हां केबे रहिबेनी, काई कि ना घंटे 2 घंटा देरी हि जाउ काम फेर थरे करि हबो, किंतु आज कलि जो प्रकार न्यूज आसुची देखिले दुख लागे।
3: हाँ हाँ मैडम सेटा तो सत कथा है।
2: हाँ ताहले सुनने बा पसंद रे गीत?
3: हाँ निश्चय, हाँ गीत टा डेडिकेट कर मा।
2: हाँ हाँ कुहंतु
3: गीत टा आपन को डेडिकेट है और आम भवानी पटना सुनुवा समस्त श्रोता मनोज पटेल क्षमा सागर साहू वृषभ गोय चित्रसेन सबर नागो पात्र करमसानी साहू सुबल कुमार साहू लोकनाथ साहू लोकनाथ प्रधान और आमर आर्मी टीम रो समस्त को एक दड़ा डेडिकेट है सेना रो।
2: ठीक अच्छी, फोन करती बार धन्यवाद, रहुची नमस्कार।
3: नमस्कार। हम

0: हेलो हेलो हेलो आकाशवाणी भवानी पटना कार्यक्रम
1: अपा नमस्कार
0: नमस्कार किए कहते कौ कहते
1: तुम्हारे दीक्षा गोपाल ग्राम सिनापड़ा पोस्ट पड़ला थाना धर्मगढ़ जिला कलाहांडी रु कहूथिली अपा
0: दीक्षा प्रथमे तो आम कार्यक्रम रे स्वागत जनाउछि केमती अछंती कहिले
1: मो बहुत भलो अछि अपा आपन माने केमती अछंती
0: जेतेबेले आपन कहंती ना बहुत भलो आमे भी भलो हे जैथाउ
1: हां अपा आ हमर कर्मकर्ता माने केमती अछंती हमर सती दादा माने केमती अछंती
0: समस्त खूब भलो रे अछंती
1: हां अपा
0: अच्छा कहि दियंतु को गीत सुने पई फोन करचंती
1: ए मु त श्रावण मास रे मते खाली शिव भजन सुनवा को बहुत इच्छा लागि थाय अपा ओ श्रोता माने भी सुनी करी पवित्र हेबे बोली मो मन रे भाबे अपा
0: निश्चित हबरे बहुत श्रावण मास चलछि ना आपण मानुचंती
1: हां मु मानुछि अपा श्रावण मास त मानुछि अपा आ बोलबम करूछि अपा
0: अच्छा ई बोलबम पे कोठी को जानती
1: जो हमारा पाख मंदिर को जा अपा मु तो देखि पारे नी बहुत दूर जाई पारे नी जो भक्त माने जानती बहुत आम पाखरे मानि लेबि अपा से भगवान कर मंदिर घरे कहले भी अपा जो आमर बेल गछर भी मानि ले अपा से भगवान प्रसन्न हुवंती सेमिति
0: ठीक कथा दीक्षा से पाखरे हो दूर रे हो किंबा घरे हो जदि भक्ति रे आमे भागीबा मानिबा सबुठी भगवान अछंती
1: अपा अपा एबे गणेश भगवान को आ कार्तिक को जते बेले बुलीबा को कहिले कार्तिक मयूर धारी बुलीले अपा किंतु गणेश निज पिता माता को पाखरे बुलीले सेई परी मो भी गणेश भगवान को परी घरे रही की माने मानुछि आ
0: हां सेईटा ही हमकु आम जीवन रे शिक्षा पाइछु को दूर को जीवा आवश्यक नहि
1: हां अपा
0: आउ कहा जाए
1: देखिबा को जानती तांकर स्वभाव अछि से माने जानतु आउ
0: ठीक अछि देखो आपन को असुविधा अछि फिर भी आपन केते सुंदर करी श्रावण मानु चंती पूजा कर चंती बोलबम कर चंती भगवान सबुटि देखु चंती समस्त को भलो कर्म से देखु चंती
1: हां अपा
0: आउ घरी समस्त केमति अछंती
1: घरे बापा मा भलो अछंती अपा
0: आज वर्षा होउछि गांदी
1: नै अपा वर्षा त होउनी 8 दिन हेलानी वर्षा होउनी अपा धान बिल रे सुखी गलेनी आउ पानी रो अभाव अछि अपा ए मेघा पेन पानी ता भी हमकु

0: ପୁଣି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିର, ଫେରିବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶବାଣୀ ପର
2: ମେରି ମନ୍ କି ବାତ୍ କେ ସମ୍ବନ୍ଧ ମେ ଅଗର ଆପ କୁଛ କହିନା ଚାହତେ ହେ ତୋ ଆପ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସଂସଦ ମାର୍ଗ ନଈ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗର ଚିଠି ବି ଭେଜ ଦେଙ୍ଗେ ଔର କୁଛ ସୁଝାଉ ଦେଙ୍ଗେ ଓ ଜରୁର ମୁଝ ତକ ପହଞ୍ଚ ଜାଏଗା ଔର ମୈଁ ଜରୁର ଉସକୋ ଗମ୍ଭୀରତା ସେ ଲୁଙ୍ଗା।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: हेलो
4: हेलो
3: किए
5: आपणक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूतिर कथा
3: आम सह कथा हुवंतु फोन माध्यम रे प्रत्येक गुरुवार दिन 11:30 मिनिट पर्यंत।
5: आमो फोन नंबर हैला
4: 0667029562329568।
3: मने रखंतु 0667029562329568 एवं एहार प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन सकाळ 9:00-10:00 पर्यंत।
6: हेलो
4: हेलो
6: किए
5: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटन।

0: ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀ ପାଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ଫରହତ ନାଜ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि AI के बढ़ते उपयोग का

0: करते हुए देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ रही हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मित्रता के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग दोब्के की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्य पर तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने भी अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। शतरंज में विश्व नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से हराया। वहीं अमेरिका के ग्रैंड मास्टर हिकारो नाकामुरा ने अलीरेजा फिरोजा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। दूसरे दिन भी खेल बारिश की वजह से देरी से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that the country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible.

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करना

0: होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Testing Agency, NTA, has released the provisional answer keys for 84 subjects of the UGC NET June 2026 examination. The NTA has also opened the challenge window, which will remain open till the 18th of August. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal. It added that candidates must support e-challenge with documentary evidence. The agency also noted challenges submitted through any other mode will not be entertained. The nation pays homage to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary today. The BJP stalwart had breathed his last on this day in 2018. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi paid floral tributes to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at his memorial Sadaiv Atal in the national capital today. Former President Ramnath Kovind, Deputy Chairman of Rajya Sabha Harivansh, Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister Rajnath Singh, Delhi Chief Minister Rekha Gupta and BJP National President Nitin Nabin were also present on the occasion. India will host the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi on Tuesday. This meeting will be preceded by BRICS Senior Officers meeting of the Environment Working Group and Contact Group on Climate Change and Sustainable Development tomorrow. The event will be held under the overarching theme of India's BRICS Chairship 2026, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS Environment Ministers meeting would be presided over by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Rajasthan today. He will also inaugurate the dairy processing plants and cattle feed plants of various milk unions. At the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be inaugurated. Additionally, appointment letters will be distributed to more than 10,500 newly appointed personnel under the Rozgar Utsav. The JPSC-JSSC aspirants' agitation in Jharkhand has intensified, with students announcing fresh protest

0: One, two, three, four.
1: सुनो, चानियो। अरे, चानियो मो।
2: देलो।
1: कौन है मिति गानी पकाऊ चाजे?
2: अरे खबर कागजर चारी पृष्ठा उल्टे लेनी स्थानीय खबर गोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ते कहीं की? आमो रेडियो टा ऑन कलनी? मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आमो आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून कर प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाए स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत कोनी कार्यक्रम खोला।

0: हेलो
1: हेलो
0: किए
2: आपनक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूति र कथा
3: आम सह कथा हुंतु फोन माध्यम रे प्रत्येक गुरुवार दिन 11टा रु 11:30 मिनिट पर्यंत
2: आम फोन नंबर हैला
4: 0667029562329568
3: मने रखंतु 0667029562329568 एवं यहार प्रसारण शुणंतु प्रत्येक रविवार दिन सकाळ 9:00 to 10:00 पर्यंत।
0: हेलो
1: हेलो
0: किए
2: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना।
5: आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंट आकाशवाणी भवानीपाटना केन्द्र एथर प्रचार करुचु केतोटी ओडिया आलबम गीत। कार्यक्रम प्रथम शिल्पी कुमार सानु गीत रचना करिछंती पंचानन नायक।

0: championship medal in the mixed doubles. Jagyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
1: In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match of Murara Oval in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win on Australian soil and only its second victory over Australia. Mehdi Hasan Miraz was the first key performer in the match. He scored a crucial half century in Bangladesh's first innings and then took 5 wickets in the second innings as Australia were bowled out for 284. Cameron Green offered Australia hope with 104 runs, his third test century and first in Australia. But Bangladesh's bowlers kept control and restricted the host to lead of just 56 runs. Bangladesh then chased the modest target in only 14.2 overs. The Directorate of Revenue Intelligence has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area. And now before we end the bulletin, the headlines once again. NTA releases provisional answer keys for 84 subjects of UGC NET 2026. Objections window to remain open till Tuesday. Students protesting against JPSC-JSSC exam irregularities in Jharkhand demand resignation of Chief Minister Hemant Soren. Union Home Minister Amit Shah unveils statue of Atal Bihari Vajpayee in Rajasthan as nation pays homage on former Prime Minister's death anniversary. Fresh low pressure over Northwest Bay of Bengal intensifies flood threat in northern Odisha. In badminton, India set to host BWF World Championships beginning tomorrow. And in cricket, Bangladesh secure historic first test win in Australia. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा. एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए. आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय. झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की. राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया. बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा. बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी. और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत. ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं. एक रिपोर्ट.
3: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं. प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा. छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है. किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा. प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है. एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी. एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन 3 विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी. एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें. सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है. और ब्यौरा हमारी संवाददाता से.
4: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं. छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की

0: सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
2: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
3: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
4: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में

0: चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला

0: मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣମାନେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିଲେ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଟିକିଏ ପରେ।
3: ବନ୍ୟା ହେଉ ବା ମହାବାତ୍ୟା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ
4: ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏ सबु स्थान रे
3: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
4: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
3: केवल आकाशवाणी।

0: ପ୍ରଚାର କଲୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାହ୍ନ 3 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तरों को चुनौती देने के लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार्य नहीं होंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। एनटीए ने उम्मीदवारों से केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कल इस संबंध में पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण करते हुए कही। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने के कारण उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जालका और बुद्धबालंग नदियों में उफान के कारण 6 जिलों में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इनमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, क्योंझर और केंद्रपाड़ा जिले शामिल हैं जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में

0: ଆଜିର ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ମିଡିୟମ ୱେଭ୍ରେ 248 ମିଟର ତଥା 1206 କିଲୋହର୍ଟ୍ଜ ଯୋଗେ। ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେକରି ପଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
2: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए,

0: साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
1: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेम्मा सानी और जिलाधिकारी कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो
1: हेलो
0: किए
2: आपणक सह किछि मीठा मीठा कथा किछि अनुभव किछि अनुभूतिर कथा
0: आमा सह कथा हुंतु फोन माध्यम रे प्रत्येक गुरुवार दिन 11टा रु 11टा 30 मिनिट पर्यंत
2: आमो फोन नंबर हैला
3: 0667029562329568
0: मने रखंतु 0667029562329568 एवं एहार प्रसारण सुनंतु प्रत्येक रविवार दिन सकाळ 9टा रु 10टा पर्यंत।

0: हेलो
1: की
0: हेलो आकाशवाणी भवानी पाटना
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: 1, 2, 3, 4।
1: सुन चार नियो। अरे चार नियो मो।
2: गला।
1: कौन एमिति गणी पकौच जे?
2: अरे खबर कागजर चारि पृष्ठा उल्टेलेनी, स्थानीय खबर गोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इत्ते काहे की? आम रेडियोटा अन कलानी मीडियम वेब्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे, एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आम आकाशवाणी भवानीपटना ट्यून कर। प्रत्येक दिन सकाळ 10:10 रु 11:10 जाए स्थानीय खबर आउ मनपसंदर गीत कुनी कार्यक्रम।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: नाम होचे गौतम सावक, ग्राम हतापुर, पंचायत रणशाली, ब्लॉक पुरस्तमपुर, जिला गंजा। मु प्रधानमंत्री फसल बीमा करितिबा जोगु आर्थिक 85,000 टंका सहायता पाइली। प्रत्येक चाषी भाई भौणी को अनुरोध, समस्ते प्रधानमंत्री फसल बीमा करन्तु।
2: खरीफ फसल बीमा पाई शीघ्र पंजीकरण करन्तु।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जनसेवा केन्द्र CSC को जोगाजोग करन्तु।
2: फसल बीमा संबंधी सूचना पाई हेल्पलाइन नंबर 1444 को कॉल करन्तु।

0: सुशासन आर जातीय गौरव के नुआ दिग दे उपमुख्यमंत्री कनक बर्धन सिंहदेव प्रभाती परड्या स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग केन्द्रमंत्री जुएल ओराम आघर केन्द्रमंत्री आउ सांसद धर्मेन्द्र प्रधान प्रमुख स्वर्गत वाजपेयी को श्रद्धांजलि जनईछन। भुवनेश्वर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स परिसर न राज्यसभा सांसद तथा बीजेपी राज्यसभापति मनमोहन सामल अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिमूर्ति थी माल्यार्पण करी श्रद्धासुमन अर्पण करिछन। इ अवसर श्री सामल देश लागि वाजपेयी अवदान के श्रोता करिछन। मधुबाबू पेंशन योजना अधीन थी आवा काल तक सबू आवेदन मानकर जांच प्रक्रिया शेष करबार के निर्देश दिया जाइछे। सूचना अनुसार मधुबाबू पेंशन योजना अधीन थी 63,848 ऑनलाइन आवेदन रो जांच नहीं होइतबार जना पड़िछे। राज्य सामाजिक सुरक्षा आउ भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग प्रमुख शासन सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ सबू जिलापाल को धारी समय भितर आवेदन पत्र मानकर जांच शेष करबार के निर्देश दैछन। इन जनई दिया जाय परे जे राज्य यहा दे 36,75,008 जन हिताधिकारी मधुबाबू पेंशन योजना थी साहस दिया जाउछे। राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी झारसुगुड़ा जिला स्वतंत्र उन्नयन परिषद नुआ कार्यालय के उद्घाटन करिछन। इ अवसर से कहिछन झारसुगुड़ा जिलार सामग्रिक विकास दिगे परिषद गुरुत्वपूर्ण भूमिका नेबा स्थानीय इलाकार आवश्यकता आउ समस्या के प्राथमिकता देकरी विकासमूलक प्रकल्प पछाजिबा सहित सेमानकु रूपायन करा शिक्षा स्वास्थ्य पानीय जल रास्ताघाट जीविका महिला आउ जुआन वर्गंकर सशक्तिकरण सहित मौलिक भित्तिभूमि विकास के जोर दिया जाय बोली श्री पुजारी कहिछन। कार्यक्रम थी स्वतंत्र उन्नयन परिषद अध्यक्ष आउ जिलापाल प्रमुख उपस्थित थिले। श्रावण मासर उज्जवल पखर पंचमी तिथि न आइबाकाल पुरी श्रीमंदिर न महाप्रभु मानकर खसा पड़ा नीति करा एथिलागि दुई नंबर भोगमंडप भोग शेष हेबा ऋतु संजर छु रातिर दस बजे तक इ गुप्त नीति करा समय थी चार घंटा लगे सर्वसाधारण दर्शन बंद रहा श्रीमंदिर प्रशासन तरफ सूचना दी जाए। उत्तर पश्चिम बंगोपसगर में होता लघुचापर प्रभाव थी राज्य भिन्न भिन्न इलाकान वर्षा लगी रही है। आईवा तीन दिन तक अति जबर वर्षा होगा बोली पाणीपाग विभाग तरफ सतर्क सूचना जारी कराई। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार चारटा जिला के आईवा काल तक सतर्कता कराई छे। केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर आउ भद्रक जिलान जबर नु अति जबर वर्षा हो बोली पाणीपाग विभाग कहिछे। इ समय भितरे घंटाक 40 नु 50 किलोमीटर बेगथी पवन हेबार संभावना रहिछे। इ बाबदे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महंति कहिछन
1: आगामी 24 घंटा पई राज्यर अधिकांश स्थान रे हल्का रु मध्यम वर्षा रहइबो ता सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा किछि स्थान रे मयूरभंज केउंजर बालेश्वर एवं भद्रक जिला जोटा की रेड कलर अलर्ट जारी करा जाय।
0: से मुख्य खबर फेर गए राज्य बजेट परिस्थिति समीक्षा कले मुख्य शासन सचिव स्थितिर परिचालना लगी तीनटा जिला के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को पठाले राज्य सरकार। ओडिशा पुलिस नुआ आरक्षी महानिर्देशक भाव अतिरिक्त दायित्व ने क्राइमब्रांच डीजी विनय दोष मिश्र पुलिस महानिर्देशक वाई बी खुरानिया चाकरी ने अवसर आउ उत्तर पश्चिम बंगोपसगर में होता लघुचाप प्रभाव थी सब जिलान बर्षार संभावना आज आंचलिक
2: भारत को 2047 मसीहा सुद्धा पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिणत करने युव गरीब महिला और कृषक मान सशक्त कर आवश्यकता रही कहले स्वराष्ट्र मंत्री। राजस्थान में 6,400 कोटी ऊर्ध टंका विनियोग विभिन्न विकासमूलक प्रकल्प कले उद्घाटन और शिलान्यास छात्र समाज को देश प्रथम नीति आधार में निजर ज्ञान दक्षता और नवसृजन को विनियोग करने को उपराष्ट्रपति आह्वान। रूस और युक्रेन मध्य क्षेपणास्त्र और ड्रोन आक्रमण में 11 जन मृत्यु एवं एफआईएच महिला हॉकी विश्वकप प्रतियोगिता रे भारत और चीन मध्य खेल 2-2 रे अमीमांसित। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कहिछन्ति 2047 मसीहा सुद्धा भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिणत करने लक्ष्य पूरण लगे युव गरीब महिला एवं कृषक मान सशक्त कर आवश्यकता रही। से कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार एही वर्गर लोकों कल्याण एवं विकास निमन्ते स्वतंत्र दृष्टि देउछन्ति। राजस्थान अलवर ठे आयोजित एक कार्यक्रम में उद्बोधन दे श्री शाह श्री शाह राजस्थान 17 जिले में 6,400 कोटी ऊर्ध

आज ही यही प्रक्रिया संपूर्ण करंतु। अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 1553333 किंबा निकटस्थ कृषि कार्यालय सह जोगाजोग करंतु।

0: बजार सह संजोगर सुजोग मध्य मिलिब।
1: तबे उद्योग गुडीकर चयन केउ आधारे करा जिवो?
0: उद्योग गुडीकु 100 मार्क मूल्यांकन आधारे चयन करा जिवो। एथिरे सर्वनिम्न 60 मार्क रखिबा आवश्यक। संपूर्ण महिलांक मालिकाना किंबा परिचालनारे थिबा उद्योगकु 15 मार्क अतिरिक्त सुविधा मध्य मिलिब।
1: चयन परे केउ प्रकारर सहायता मिलिब?
0: चयन करा जायथिबा 18 जन उद्योगींकु प्रतियोगिता मूलक अनुदान पांठि अधीनरे निजर व्यवसाय योजना उपस्थापन करि 15 लाख टंका पर्यंत अनुदान पाई परिबे। एहा सह व्यवसाय विस्तार पई 0% सुद्धरे सॉफ्ट लोन सुविधा मध्य उपलब्ध रहिछि।
1: तबे आवेदन किपरि करा जिवो?
0: एति पई ग्राम पंचायत स्तरीय संघ माध्यम रे किंबा सीधाफलक मध्य आवेदन करि परिबे। आवेदनर शेष तारीख 24 अगस्त 2026 संध्या 5:30 पर्यंत।
1: पुणि थरे मने रखंतु 24 अगस्त 2026 संध्या 5:30 पर्यंत।
0: योग्य महिला उद्योगी माने शेष मुहूर्त को अपेक्षा न करी शीघ्र आवेदन करंतु। आजिर छोट ग्रामीण उद्योग होई पारे आसंता कालीर बड़ ब्रांड।
1: कौशल तांकर, उद्यम तांकर, एबे सफलतार परिचय मध्य तांकर।
2: सशक्त महिला समृद्ध ओडिसा।
3: प्रचार कलु ओडिशा जीविका मिशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: ଏତେବେଳ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲେଖରୀ ପଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ଓ ଆମରି ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚିଠି ପାଇଛୁ। ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ସଚିତାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଆଶ୍ୱାସନ ପଟ୍ଟନାୟକ।

0: शहर को पहुंच रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत ने गोल में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 9 विकेट खोकर 460 रन बना लिए थे। वहीं एक और खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से, जहां बांग्लादेश ने कंगारुओं को हरा करके रचा है टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास। बात की जाएगी कार्यक्रम में महिला हॉकी विश्व कप की, जहां भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलते हुए इस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट टीम को एक कड़ी टक्कर दी है। और बैडमिंटन का मैदान अब सज चुका है राजधानी नई दिल्ली में, जहां कल से शुरू होगी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। और अंत में कार्यक्रम में बात की जाएगी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं गोल में। भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाकर के अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के लिए देवदत्त पड्डीकल ने 167 रन का शानदार योगदान दिया। दिन का पहला सत्र बारिश के कारण पूरी तरीके से धुल गया। इसके बाद भारत ने अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू किया। और क्रिकेट की खबरों पे और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, आज के मैच पहला सेशन जिस तरह से गया, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना मौका मिल पाएगा खेलने का, इतने रन बन पाएंगे, लेकिन भारत ने कह सकते हैं एक मजबूत पकड़ हासिल कर ली है मैच में।
1: जी शक्ति, बिल्कुल, जिस तरीके से बारिश आज हो रही थी उस समय ऐसा ही लग रहा था कि आज का खेल जो है वो धुल जाएगा,

0: लेकिन देवदत्त पड़िक्कल जब बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से आए तो उसी लय में नजर आए और शानदार बल्लेबाजी का उन्होंने प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत ने भी उनका अच्छा साथ निभाया, 39 रन का योगदान दिया। लेकिन जब ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 68 गेंदों पर 51 रन बनाए उन्होंने। एक अच्छी पारी, एक बैलेंस्ड पारी उन्होंने खेली और टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ाया। लास्ट में मानव सुथार ने भी 43 गेंद पर 24 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को 460 रन के स्कोर तक पहुंचा है।
1: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक मजबूत पकड़ भारत ने आज हासिल कर ली और दोहरे सेशन का खेल हो पाया। आपने देवदत्त पड्डीकल की बात की, इसके पहले इस खिलाड़ी ने दो टेस्ट मैच खेले थे, 90 रन बनाए थे, लेकिन कह सकते हैं कि सारी भरपाई कर दी इस तीसरे मुकाबले में।
0: जी बिल्कुल, और कई कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किए हैं। नंबर 3 पर श्रीलंका की धरती पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है और इसके साथ ही साथ वो तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं नंबर 3 पर खेलते हुए जिन्होंने 150 प्लस स्कोर बनाया है श्रीलंका की धरती पर। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा ने कर पाया था। इसके अलावा अगर शक्ति बात करें तो इंडिपेंडेंस डे के दिन शतक लगाने वाले वे पहले टेस्ट बैटर बन चुके हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय शतकों की बात करें तो उन्होंने विराट कोहली की लिस्ट को ज्वाइन किया है जिन्होंने ओडीआई शतक लगाया था। तो इसके अलावा अगर कहीं कहा जाए तो 2024 के बाद नंबर 3 पर किसी ने शतक लगाया ही नहीं था भारत के लिए टेस्ट में। 19 मुकाबलों के बाद 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद देवदत्त पड्डीकल निखर कर आए और उन्होंने शतक जमाया।
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं, और शतक का और मोल तब बढ़ेगा जब भारत इस मुकाबले में जीत हासिल करता है और शायद वो स्वतंत्रता दिवस के शतक की जो लहर है वो और मजबूत होती भी नजर आएगी। भारत को दो टेस्ट मुकाबले खेलने हैं, इसके बाद भारतीय टीम अगला टेस्ट जो है वो 19 नवंबर को खेलेगी। बीच में एक लंबा फासला है और बहुत तेजी से बदलती हुई WTC की टेबल है जो आपका स्लॉट फिक्स करेगी फाइनल में। लेकिन भारत के साथ ही आज बात होनी चाहिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के टेस्ट क्रिकेट में सफेद जर्सी में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया है और 23 साल बाद वो टेस्ट श्रृंखला खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली ये बांग्लादेश की टीम बनी है, जिसने डार्विन में पहले टेस्ट मैच में जब उसको चौथी पारी में जीत के लिए 57 रन की आवश्यकता थी, टीम ने महज एक विकेट खोकर के ये लक्ष्य हासिल कर लिया। और जिस तरह का ये पूरा का पूरा मुकाबला रहा, आज शादमान इस्लाम 25 रन और मोमिनुल हक 30 रन बनाकर नाबाद रहे और वो जीत दिलाई जो शायद दशकों तक बांग्लादेश क्रिकेट में और विश्व क्रिकेट में याद की जाएगी। भारत जैसा मजबूत देश, न्यूजीलैंड जैसी टीम भी उनकी धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराने से पहले कई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने कर दिखाया।
0: जी बिल्कुल शक्ति, और ऑस्ट्रेलिया जब मैदान पर उतरी तो उन्होंने टॉस के साथ ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे बल्लेबाजी चुन के कि वो इस मुकाबले को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने पहली पारी से ही मुकाबले पर पकड़ बनानी मजबूत कर दी। उनके गेंदबाज हसन महमूद ने पहली पारी में 6 विकेट लिए और पहले ऐसे गेंदबाज बने, बांग्लादेशी गेंदबाज बने, जिन्होंने 5 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर और 198 रन पर ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद तंजीद हसन जो कि पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाया और 426 रन के स्कोर तक टीम को पहुंचाया। इसके बाद मेहंदी हसन मिराज ने तीसरी पारी में शानदार 5 विकेट हॉल लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर पहुंचा दिया और आखिरी पारी में तो सबने देखा ही कि बांग्लादेश ने किस तरीके से आसान जीत दर्ज कर ली। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है शक्ति, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने तीसरे प्रयास में ही ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीत लिया है, जबकि पाकिस्तान को 7 और भारत को 12 मुकाबले लगे थे। तंजीद हसन, मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद, इन सब खिलाड़ियों की जितनी भी बात करें उतनी कम। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रंगना हैरत का 433 विकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो बाएं हाथ के गेंदबाज सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में। और जोश हेजलवुड ने भी 300 विकेट का आंकड़ा जो है छू लिया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला चला और बहुत ही ऐतिहासिक ये मैच, जहां बांग्लादेश तीसरी एशियाई टीम बनी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीतने वाली।
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं कि सफेद जर्सी में ऑस्ट्रेलिया को हराना हर टेस्ट प्लेइंग नेशन का एक ख्वाब होता है। और इसके पहले जब बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैच खेलने उतरी थी तो उसे जिम्बाब्वे से एक पारी और 85 रन से हार का सामना करना पड़ा था और काफी आलोचना हुई थी उस टीम की, लेकिन कह सकते हैं कि एक नई रणनीति, नए जोश के साथ उतरी और ये वही बांग्लादेश टीम है जिसने इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को एक दिवसीय श्रृंखला में 2-1 से हराया है, पाकिस्तान को टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से हराया है, आयरलैंड पे 2-0 की जीत दर्ज की है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा उदय नजर आता हुआ इस टीम का क्रिकेट के मैदान पर और एक बहुत शानदार जीत जो शायद ये टीम, इस टीम का हर खिलाड़ी अपने दिल में सालों सालों तक सजो के रखेगा।

0: और अब क्रिकेट के मैदान के बाद बात की जाए हॉकी की, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत एक दमदार प्रदर्शन के साथ की है। भारत ने 2024 ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। सुनते हैं इस मैच पर ये रिपोर्ट।
1: अम्स्टेलविन के वागिनर हॉकी स्टेडियम में चीन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करने उतरी भारतीय महिला टीम भले ही नतीजे को जीत में तब्दील नहीं कर सकी, लेकिन टीम ने अपने शानदार खेल की बदौलत मुकाबले को 2-2 के स्कोर से ड्रॉ पर रोक दिया। भारत की ओर से नवनीत और दीपिका ने गोल किए। भारत ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। भारत को मैच के 8वें मिनट में पहली सफलता मिली जब नेहा ने डी के बाहर से गेंद सर्किल में भेजी, जिस पर नवनीत ने अंतिम टच देते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। 14वें मिनट में चीन की झांग यिंग ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भारत ने एक बार फिर आक्रामक खेल दिखाया। दीपिका ने शानदार प्रयास करते हुए चीनी सर्किल में प्रवेश किया और बेस लाइन तक पहुंचकर फाउल हासिल किया, जिससे भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने खुद जिम्मेदारी संभाली और बेहतरीन ड्रैग फ्लिक के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। भारत ने 2-1 की बढ़त बना ली और इसी स्कोर के साथ हाफ टाइम तक आगे रहा। हालांकि 39वें मिनट में चीन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जहां मा निंग ने शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर गेंद को भारतीय गोल में पहुंचा दिया और स्कोर 2-2 कर दिया। चौथे क्वार्टर में चीन ने विजयी गोल के लिए लगातार हमले किए, जबकि भारतीय टीम ने भी जवाबी हमले के जरिए मौके तलाशे। मैच के अंतिम मिनटों में चीन को पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, लेकिन भारतीय डिफेंस ने शानदार संयम दिखाते हुए सभी खतरों को टाल दिया। आखिरकार दोनों टीमें निर्णायक गोल नहीं कर सकी और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम अब 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला पूल डी मुकाबला खेलेगी। भारत की नजर इस मुकाबले में वर्ल्ड कप की पहली जीत दर्ज करने पर होगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जहां पर भारतीय महिला टीम ने एक शानदार शुरुआत कर दी है, अब पुरुष टीम जो पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हरा चुकी है, अब कल अपना दूसरा मुकाबला शाम 6:30 से भारतीय समय अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। और अब बात की जाए नई दिल्ली में सेट हो चुके BWF विश्व बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप के स्टेज की, जो कि कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। पूर्व चैंपियन पीवी सिंधु और भारत की शीर्ष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इस प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। 2009 के बाद यह दूसरा मौका है जब भारत इस वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। 23 अगस्त तक चलने वाली इस 30वीं BWF विश्व चैंपियनशिप में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भारतीय सरजमी पर अपना दमखम आजमाते नजर आएंगे।
1: दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पिछले महीने जापान ओपन का खिताब जीतने के बाद अपनी शानदार फॉर्म को इस टूर्नामेंट में भी बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी। पीवी सिंधु 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट रही हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा भारत की दूसरी प्रतिनिधि है। वहीं पुरुष सिंगल्स में 2021 में इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भारतीय चुनौती रखेंगे। आयुष को एक कठिन शुरुआती दौर का मैच मिला है, जहां उनका मुकाबला मौजूदा विश्व विजेता और टॉप सीड चीन के शी युकी से होगा। पुरुष डबल्स की बात की जाए तो एशियाई खेलों के चैंपियन और 5वीं सीड सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर बैडमिंटन ओपन वाली अपनी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हरिहरन, अमसा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी भी भारतीय दल का हिस्सा है। महिला डबल्स में भारत को त्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद तथा कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी से उम्मीदें होंगी, जबकि मिक्स डबल्स में देश की 3 जोड़ियां हिस्सा लेंगी, जिसमें सबसे अधिक उम्मीद ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो से होगी। वहीं रोहन कपूर और ऋत्विका गदे तथा आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य समेत कुल 15 पदक जीते हैं। 2011 के बाद से भारत ने हर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम से कम 1 पदक जीता है। ऐसे में अपनी सरजमीं पर खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदें घरेलू दर्शकों के बीच अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर होगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो कहा जा सकता है कि इन खिलाड़ियों के साथ साथ जो सबसे मजबूत

0: फैक्टर होगा वो होगा घरेलू दर्शक और अपनी घर की कंडीशंस। पीवी सिंधु ने कहा है कि वो भारतीय सरजमी पर इस टूर्नामेंट के लिए बेहद उत्साहित हैं।
1: And definitely, I mean, to answer to your question, I think after Japan Open, I think winning that gave me a lot of boost and a lot of confidence.
0: संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सिंधु ने खेलों के क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की है।
2: I think it's really good to have that scope of thinking and making it happen in India. I think PM sir has that vision that you know we can host it. You know, there's nothing wrong in making it happen when PM sir said you know we want to make it happen. Now we all have to like work backwards since you know we have the facilities. It's just that we have to improvise it in a right way. And I'm hoping that we could, and that will be an amazing thing that even we can do it.
0: वहीं पीवी सिंधु के साथ उन्नति हुड्डा ने भी कहा कि वो भारतीय सरजमी पर खेलने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं।
3: It's my first world championships and it's happening in India. So I am really excited and looking forward for each match at a time. So I have prepared well mentally and physically.
0: और आयुष शेट्टी ने अपनी तैयारियों को लेकर के क्या कहा है, चलते चलते ये भी सुन लिया जाए।
4: As far as I think world championship, I think it's a really big tournament for everyone, even you know, for the world's best players. I think it's a huge stage, and it's happening in India. I think it's more special for me.
0: तो एक बड़ा अवसर होगा इन खिलाड़ियों के लिए। और नई दिल्ली में आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देश भर में ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित रहा। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पहलवान शिवानी पवार ने कहा कि इस तरह की पहल हमारे दैनिक जीवन में फिटनेस को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है।
5: संडे ऑन साइकिल का मेरा ये पांचवा इवेंट है। संडे ऑन साइकिल हमारे निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है फिटनेस की तरफ जाने के लिए, ज्यादातर उन लोगों के लिए जो अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जो घर में रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा फिटनेस का एक मॉडल है।
0: और विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों 2025 की स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज पूनम बिष्ट ने भी इस दौरान साइकिल चलाई और लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फिट इंडिया अभियान एक बेहतरीन पहल है जो साइकिल चलाना किफायती और प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ फिट रहने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, इसके बारे में संदेश देती है। और श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राज्य

0: राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क

0: न होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत

0: जंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
3: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा

0: की ओर अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state.
3: If we want to make India a fully developed nation by 2047, we need to empower the youth, the poor, farmers and women. With this objective, farmers are being provided with the Kisan Samman Nidhi scheme benefits. Dairy facilities worth 500 crore rupees are being established for livestock. Employment opportunities are being created for the youth, and the BJP government has taken steps to expand Saras Dairy for women.
2: He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price.
3: Not a single year between 2014 and 2026 has passed without the government

0: आपणको सा साक्षात करबाकु चाहचंती
1: तांको भीतर को नै आसो
2: प्रणाम हजुर
1: अच्छा तुमे ही आधार सिंह
2: आज्ञा हां जहांपन छोटिया राज्य रो जणे छोटिया कर्मचारी
1: बहुत कथा सुनि छ तुम विषय रे
2: आपण आमो महारानी को गोटे उपहार पठाइतिले से मध्य आपणको पई एक विशेष उपहार पठाइचंती
1: अच्छा देखे सही थाड़ी रे कौन अछि उपहार टी होना जाओ एटा कौन
2: एटा तुला भिणा हजुर सूता काटिबा पूर्वरु एथिरे तुला को भिणा जाय
1: तुला भिणा ता अपनी सुना बीरबल ए तुला भिणा पठेबार अर्थ कौन बीरबल
3: आली जहा रानी दुर्गावतींकर एहा पठेबार अर्थ हेउची आपण गढ़ा जय करिबार पौरुषपूर्ण स्वप्न को त्याग करी स्त्री मानक भली तुला भिणीबा काम आरंभ कर दियंतु एमितिरे तो आउ गोटे अर्थ भी हेई परे
1: आ कोन हेई परे बीरबल
3: आउ गोटे अर्थ एया जे जदि आपण गढ़ा उपरे आक्रमण करंती ताहेले से आपण को बंदी करि देबे आउ आलीजा बंदी मानक तो तुला भिणीबा काम दिया जाय तेणु आपण को भी
1: एते साहस लागुची गढ़ा राज्य रे सुना बेसी हेई गलानी
2: आपण ठीक कहले साइंस गोड़ा राज्य रे सुवर्ण भी रही सौर्य भी आम राज्य कलरा भोली जीए ताकू गिलीबा को चेष्टा करिवो ता तंटी पिता हे जीवो
1: हरहर सिंह जय कहि दबो दुर्गावती को से युद्ध पई प्रस्तुत रहो
2: महारानी दुर्गावती को अंतु आली जा महारानी दुर्गावती
1: हो हला महारानी दुर्गावती तमे बे जाई पड़ो आजम खान
4: हजुर
1: आजम खान युद्ध पाई प्रस्तुति कर तुरंत गढ़ा पर आक्रमण कर मोर गढ़ा दरकार मोर बुझ पड़ल
4: ता ही है हजुर
5: महारानी का जय हो
6: आपण फेरी आसिले आधार सिंह आमर तुला भिणा जलालुद्दीन को केमिति लागिला
2: अकबर रागी की पागल हो गेलानी महारानी खबर मिली जे गढ़ा उपरे आक्रमण करने को सी तार सेनापति आसफ खां को आदेश दे युद्ध बाहरी पड़ी
6: आम गोंडवानावासी आम युद्ध प्रस्तुति करूना बर सबुले प्रस्तुत ही रही था आसतु से
7: आपर युद्ध है नरई नाल पाखे घमाघट युद्ध आरंभ राणी दुर्गावती गरिला युद्ध कौशल अवलंबन कर निजर हजार सैन्यों सह शत्रुपक्षर विराट सैन्यवाहिनी को पछघुंचा देवा बाध्य कले नरई नाल पाखे संकीर्ण मार्ग में फसी जाइथिबा मुगल सेनार हजार हजार सैन्य मशा माछी परी मृत्युर सम्मुखीन हेले निज सैन्यवाहिनीर एभली अवस्था देखि आसफ खां अतिमात्रा विव्रत हो पड़ते आजर बंची सैन्य मानू पलायन करते कि दिन अर्थात 1564 मसीहा जून 24 तारीख दिन से पुणी फेरिले
8: महाराणी महाराणी भारी ओगा हेगला एथर तो आसफ खां निजर सबु कमाण पहाड़र पादेश पाखक नहीं आसी सम्मुखें बहुत गुड़ी कमाण देखा जाउछि
6: ओह आमर केते बड़ भूल हेगला जदि आमे काली राति रे आक्रमण कर दे थांतु ताहले तांको कमाणर मुह खोलिबा आगरु ही से सबु नष्ट होइ सारि थांता छाड़ एबे पछ को देखिबार समय नहीं वीर सैनिक गण आक्रमण कर
4: सैन्यगण दुर्गावती हाथी उच्च पहाड़ पर अच्छी आम कमाण गोला से जाए ठीक भाव पहुंची पार नहीं किसी दक्ष तीरचालकों ऊपर को पठा

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीड के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहती हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के 7 चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Music Festivals and All Bengal Music Festivals, Ritam Sarkar is a widely travelled guitar artist both in India and abroad to participate in music concerts and programs, musical workshops, as well as lecture demonstrations. Besides, Ritam Sarkar is actively involved with social fundraising events for the benefit of underprivileged children suffering from cancer and is also working on a meditation project on the 7 chakras of our body.
0: Aaj raat Ritam Sarkar ke saath tabli par sangat kar rahe hain Oshit Jana.
1: Tonight Ritam Sarkar is accompanied on the tabla by Oshit Jana.
0: Gitar vadan ke is karyakram ki shuruaat

0: अब राग मालकोंस के साथ करेंगे। आलाप जोड़ और झाला से सज्जित यह बंदिश विलंबित झपताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: रितम सरकार बिगिन्स हिज गिटार रिसाइटल विद राग मालकोंस विद आलाप जोड़ एंड झाला। द कंपोजिशन इज सेट टू विलंबित झपताल फॉलोड बाय द्रुत तीन ताल।

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम शर्कार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Malkos in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Rag Megh. It begins with an alap and the composition is set to gat in Rupak Tal.

0: आप रितम सरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा दाल में आबद्ध है।
1: You were listening to Raag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Raag Kirwani.
2: The composition is set to Kaharwa Taal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औशित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: You were listening to Raag Kirwani in the guitar recital by Ritam Sarkar. He was accompanied on the tabla by Oshit Jana. And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों, अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे।